0: गर्मी बढ़ रही है, पसीना भी हो रहा है, काम कर नहीं जा रहा है, कि मजबूरी है, क्या करें, पेट पालना होता है तो काम करना पड़ेगा।
1: पहले कितना घंटा काम करते थे?
0: पहले पाँच सात

हालत ख़राब हो जाती है यहाँ से जाने में, इतना हालत ख़राब हो जाए कि उठा भी नहीं जाता बच्चे को, गर्मी से इतनी हो जाता है कि एकदम डिटेल हो जाता है।

0: गर्मी बढ़ रही है, पसीना भी हो रहा है, काम कर नहीं जा रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, पेट पालना होता है तो काम करना पड़ेगा।
1: पहले कितना घंटा काम करते
0: थे? पहले 5-7-8-10 घंटे काम हो जाते, अभी 2-3 घंटे करने का पड़ता है।

सोचो मतलब क्या हालत ख़राब हो जाती है यहाँ से जाने में, इतना हालत ख़राब हो जाए कि उठा भी नहीं जाता, गर्मी से इतनी हो जाता कि एकदम बीपी लो हो जाता है।